इतिहास की भव्यता और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, वीरता और स्वराज्य के सपने को पूरी गहराई के साथ पर्दे पर उतारी जा सके, इसकी तैयारी की जा रही है। इस ग्रैंड सागा का पहला इंस्टॉलमेंट फिलहाल 2028 में थिएटरिकल रिलीज का प्लान किया जा रहा है, जबकि सेकेंड चैप्टर को 2029 में रिलीज होने की उम्मीद है। संदीप सिंह के डायरेक्शन में बन रही ये ग्रैंड एम्बिशियस मल्टी पार्ट पैन इंडिया सिनेमेटिक एपिक है, जिसके लिए हम सब देते हैं आपको इस फिल्म के लिए शुभकामनाएं। और फिलहाल दोस्तों, इस समय आप सुनेंगे बीबीसी स्टंप को, सो स्टे ट्यून्ड।